0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। और अब कुछ मजीद खबरें। जापान के ओगासावारा जजायर के करीब पानियों में पीर से मंगल तक एक बड़ा और इंतहाई शदीद समंदरी तूफान शिमाल की तरफ बढ़ने की तवक्को है। जापान की मौसमियाती एजेंसी का कहना है कि पीर की सुबह 6 बजे तक समंदरी तूफान चोईवान 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ओगासावारा जजायर के करीब शिमाल की जानेब बढ़ रहा था। समंदरी तूफान का मरकजी दबाव 925 हेक्टो पास्कल था। इसके मरकज के करीब 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही थी, जबकि 252 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से झक्कड़ उठ रहे थे। तूफान की मशरकी जानिब 220 किलोमीटर और उसकी मगरबी जानिब 165 किलोमीटर के अंदर अंदर 90 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा की तेज हवाएं चल रही थीं। ओगासावारा जजायर के करीब समंदर में शदीद तुगयानी होगी, जबकि पीर और मंगल को लहरें 8 मीटर तक बुलंद होने की तवक्को है। हवाएं भी तेज होंगी। मंगल तक हवा की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 72 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंचने और 108 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से झक्कड़ चलने की पेशगोई है। मौसमियाती हुकाम लोगों को बुलंद होती लहरों, तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश से चौकन्ना रहने का कह रहे हैं। ब्राजील के सदारती इंतखाब का हतमी मरहला दाएं बाजू के सेनेटर फ्लाविओ बोल्सोनारो और बाएं बाजू के मौजूदा सदर लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा के दरमियान 25 अक्टूबर को होगा। इंतखाबी हुकाम का कहना है कि इंतखाब के पहले मरहले में किसी उम्मीदवार ने भी अक्सरियती वोट हासिल नहीं किए। सदारती इंतखाबात इतवार के रोज मुनाकिद हुए। इंतखाबी हुकाम का कहना है कि 98.6% वोटों की गिनती मुकम्मल होने के साथ साबिक सदर जेयर बोल्सोनारो के बड़े बेटे बोल्सोनारो को 47.2% वोटों के साथ सबकत हासिल थी। लूला 44.8% के साथ दूसरे नंबर पर थे। इंतखाबी मुहिम के दौरान बोल्सोनारो ने सलामती इकदामात को मजबूत बनाने और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया के साथ मिलकर दीगर पॉलिसियों को आगे बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया था। लूला ने बड़ी ताकतों को मदाखलत की इजाजत दिए बगैर शहरियों के दरमियान तफावत कम करने और कौमी खुदमुख्तारी बरकरार रखने पर तवज्जो मरकूज रखी। दोनों उम्मीदवारों के दरमियान इंतखाबी मुहिम के दौरान सख्त मुसाबकत रही है। पीर को योकोता मेगुमी की 62वीं सालगिरह है, जिसे शिमाली कोरिया ने जूनियर हाई स्कूल के पहले साल के दौरान अगवा कर लिया था। इस मौके पर उसकी वालदा साकिये ने अपनी बेटी की जल्द अज जल्द वापसी की अपील की। इस साल 90 वर्ष की होने वाली साकिये ने कहा कि वो गुस्से और मायूसी का शिकार है कि तकरीबन 50 साल तक इतनी मेहनत करने के बावजूद वो अपनी बेटी की आवाज तक नहीं सुन सकती। मेगुमी को शिमाली कोरिया के एजेंटों ने 49 साल कबल 15 नवंबर 1977 को बहिरा जापान के साहिल पर वाकया नीगाता शहर में स्कूल से घर जाते हुए अगवा कर लिया था। 90 साल की उम्र में साकिये हुकूमत की तरफ से तस्लीम शुदा और अब तक लापता मगवियान के जिंदा वालदेन में आखिरी शख्सियत हैं। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि इस मसले से लोगों को आगाह करने के लिए जापान भर का सफर करने के बावजूद कोई मालूमात सामने नहीं आई है। उन्होंने बताया कि पहले वो मेगुमी की सालगिरह पर केक खरीदती थी, लेकिन उन्होंने मजीद कहा कि अब कई सालों से उन्होंने केक खरीदना बंद कर दिया है, क्योंकि वो एक ही अमल को बार बार दोहराने के काबिल नहीं रही। उन्होंने कहा कि अब भी वो इस गर्मजोशी को नहीं भूल सकती जो उन्होंने अपनी बेटी की पैदाइश के वक्त महसूस की थी।
1: अब आज की चंद अहम खबरों की सुर्खियां। जनूब मगरबी जापान के ओकिनावा में पुलिस ने प्रीफेक्चर में तैनात एक अमरीकी मेरीन को मकामी खातून के कत्ल और डकैती के शुबे में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि खातून की मौत दम घुटने से हुई। मुलजिम अमरीकी मेरीन कोर के फुतेनुमा फजाई अड्डे पर तैनात है। जापान की वज़ीर आज़म ताकायची सानाए का कहना है कि जापानी हुकूमत ने ओकिनावा में तैनात अमरीकी मेरीन की डकैती और मकामी खातून के कत्ल के शुबे में गिरफ्तारी के बाद अमरीका से शदीद एहतजाज किया है। वज़ीर आज़म ताकायची ने इतवार के रोज सोशल मीडिया पर लिखा कि इस तरह का इंतहाई सफाकाना और घनौना वाकया इंतहाई अफसोसनाक है। एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। مزید خبروں اور ویڈیوز کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 5 अक्टूबर सोमवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। दक्षिण पश्चिमी जापान के ओकिनावा प्रीफेक्चर में पुलिस ने एक स्थानीय महिला की हत्या और लूटपाट के संदेह में वहां तैनात एक अमरीकी मरीन सैनिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि महिला की मौत दम घुटने से हुई। इस 20 वर्षीय संदिग्ध का नाम डेविन जेकब बेलार्ड है, जो अमरीकी मरीन कोर के फुतेम्मा वायु सैन्य अड्डे में तैनात है। उस पर शनिवार तड़के 2 से 4 बजे के बीच शहर के एक होटल में 39 वर्षीय नाहा निवासी यागी अन्ना की हत्या करने का आरोप है। उस पर महिला का बटुआ और अन्य सामान चुराने का भी संदेह है। पुलिस का कहना है कि पीड़िता के शव की विस्तृत जांच से पता चलता है कि उसकी मौत गर्दन पर दबाव पड़ने से दम घुटने के कारण हुई। सुरक्षा कैमरे की फुटेज में एक व्यक्ति को एक महिला के साथ होटल के कमरे में प्रवेश करते और बाद में कुछ सामान लेकर बाहर निकलते हुए देखा जा सकता है। फुटेज में दिख रहे व्यक्ति के बाल और टैटू कथित तौर पर बेलार्ड से मिलते जुलते हैं। जापान अमेरिका सैन्य बल समझौते में ये प्रावधान है कि ड्यूटी पर तैनात अमरीकी सैन्य कर्मियों द्वारा किए गए अपराधों पर कार्रवाई करने का प्राथमिक अधिकार अमरीकी अधिकारियों के पास है। समझौते में ये भी कहा गया है कि ड्यूटी पर ना रहते हुए किए गए अपराधों के मामले में यदि संदिग्ध अमरीका के कब्जे में हैं तो वो जापानी पक्ष द्वारा अभियोग लगाए जाने तक अमरीकी हिरासत में ही रहेंगे। बेलार्ड को पुलिस ने शनिवार देर रात ओकिनावा शहर के एक मनोरंजन क्षेत्र में पाया, जो होटल से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसका मामला अमरीकी सेना की आधिकारिक ड्यूटी से संबंधित नहीं है। पुलिस का कहना है कि संदिग्ध ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि उसे कोई जानकारी नहीं है। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सानाए ने कहा है कि ओकिनावा में तैनात एक अमरीकी मरीन सैनिक की स्थानीय महिला से लूटपाट कर उसकी हत्या करने के संदेह में गिरफ्तारी के बाद जापान सरकार ने अमरीका से कड़ा विरोध दर्ज कराया है। ताकाइची ने रविवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि इस तरह का बेहद क्रूर और जघन्य अपराध अत्यंत खेदजनक है। उन्होंने ये भी लिखा कि सरकार ने जांच में अमरीका के पूर्ण सहयोग, अमरीकी सैन्य कर्मियों के बीच अनुशासन को कड़ा करने और ऐसी घटनाओं और दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए व्यापक उपायों की पुरजोर मांग की। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार इस मामले में हर संभव प्रयास करेगी। जापान के रक्षा मंत्री कोइजुमी शिंजिरो ने भी कहा कि उनके मंत्रालय ने अमरीकी पक्ष के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है। कोइजुमी ने रविवार को कानागावा प्रीफेक्चर में पत्रकारों से बात करते हुए इस घटना पर आक्रोश जताया और इसे निंदनीय करार दिया। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका से अपने सैन्य कर्मियों को शिक्षित करने और पीड़ित परिवार को शीघ्र व उचित सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान के ओगासावारा द्वीप समूह के निकट जलक्षेत्र में सोमवार से मंगलवार के बीच एक विशाल और अत्यंत शक्तिशाली तूफान के उत्तर की ओर बढ़ने की आशंका है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी का कहना है कि सोमवार सुबह 6 बजे तक तूफान चोइवान 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओगासावारा द्वीप समूह के पास उत्तर दिशा में आगे बढ़ रहा था। इस तूफान का केंद्रीय दाब 925 हेक्टोपास्कल है। इसके केंद्र के पास हवा की गति 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक है और कुछ झोंकों की अधिकतम गति 252 किलोमीटर प्रति घंटे तक पाई गई।

तूफान के पूर्वी हिस्से में 220 किलोमीटर से लेकर पश्चिमी हिस्से में 165 किलोमीटर तक के दायरे में 90 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही थीं। ओगासावारा द्वीप समूह के पास समुद्र बहुत अशांत रहेगा और सोमवार तथा मंगलवार को लहरों की ऊंचाई 8 मीटर तक पहुंचने की आशंका है। हवा की गति भी तेज रहेगी। अनुमान है कि मंगलवार तक हवा की अधिकतम गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा और झोंकों की गति 108 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने लोगों से ऊंची लहरों, तेज हवाओं और भारी बारिश के प्रति सतर्क रहने का आह्वान किया है। ब्राजील में राष्ट्रपति पद के लिए 25 अक्टूबर को दक्षिणपंथी सांसद फ्लाविओ बोल्सोनारो और वामपंथी दल के मौजूदा राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा के बीच दूसरे दौर का चुनाव होगा। निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार हालिया चुनाव में कोई भी उम्मीदवार बहुमत हासिल नहीं कर पाया। ब्राजील में रविवार को मतदान हुआ। निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार 98.6% वोटों की गिनती के बाद पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के सबसे बड़े बेटे फ्लाविओ बोल्सोनारो 47.2% वोटों के साथ आगे चल रहे थे, जबकि उनसे कुछ ही पीछे लूला 44.8% वोट हासिल कर चुके थे। चुनाव प्रचार के दौरान बोल्सोनारो ने सुरक्षा उपाय मजबूत करने और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के अनुरूप अन्य नीतियां आगे बढ़ाने का वायदा किया था। वहीं लूला ने प्रमुख शक्तियों के हस्तक्षेप को अनुमति दिए बिना असमानताएं कम करने और राष्ट्रीय संप्रभुता बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर रही। उत्तर कोरिया द्वारा अपहृत जापानी नागरिक योकोता मेगुमी का सोमवार को 62वां जन्मदिन है। उत्तर कोरिया ने उनका अपहरण तब किया था जब वे 7वीं कक्षा में थीं। उनके जन्मदिन के अवसर पर उनकी माँ साकिए ने अपनी बेटी की जल्द से जल्द स्वदेश वापसी की अपील की। 90 वर्षीय साकिए ने कहा कि करीब 50 साल तक इतनी मेहनत करने के बाद भी वे अपनी बेटी की आवाज तक नहीं सुन पा रही हैं, जिस कारण वे बेहद क्रोधित और निराश हैं। गौरतलब है कि उत्तर कोरियाई जासूसों ने 49 साल पहले 15 नवंबर 1977 को जापान सागर के तट पर स्थित नीगाता शहर में स्कूल से घर लौट रही मेगुमी का अपहरण कर लिया था। 90 वर्षीय साकिए सरकारी मान्यता प्राप्त अपहृतों की एकमात्र जीवित अभिभावक हैं। उन्होंने अफसोस जताया कि जापान भर में जगह जगह इस मुद्दे पर लगातार बात करने के बावजूद अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले तक वे मेगुमी के जन्मदिन पर केक खरीदा करती थीं, लेकिन फिर उन्होंने केक खरीदना बंद कर दिया क्योंकि बार बार ऐसा करना उनके लिए असहनीय हो गया था। उन्होंने कहा कि बेटी के जन्म के समय उन्हें जो खुशी और अपनापन महसूस हुआ था, वो उन्हें आज तक याद है। इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है। ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें एनएचके वर्ल्ड जापान।